0: कबु पेहारी नीच का साजा।
1: आवे कबु पला पला कहावे,
0: जो प्रभ राखे तिव ही रहा, गुर प्रसाद नान सच कहै।
1: कबु होए पंडित करे विख्यान, कबु मौन तारी लावे ध्यान,
0: कबु तट तीते स्नान, कबु सिद्ध साधक मुख ज्ञान।
1: कबु कीट हस्त तंग होए जिया, अनक जोन पर में पर मैया,
2: नाना रूप जो स्वागी दिखावे,
0: जो का पाला तवान जावे।
1: सोई होए नानक दूजा अवर ना कोई,
0: कबहू सा संग त्यो पावे।

0: शरम पावे सगले बिरथारे।
1: अनक तपस्या करी अहंकार, नरक स्वर्ग फिर अवतार।
0: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे, हर दरगह को कैसे गवे।
1: आप को जो भला कहावे, तिसहि भलाई निकट न आवे।
0: सर्व की रेण जाका मन होए, कहो नानक ता

0: संतोख
1: नहीं को राजै सुपन मनोरथ बृथे सब काजै
0: नाम रंग सर्व सुख होए बड़ भागी किसा।

0: तार
1: किस करे सोई सुखमान भूला काहे फिरे अजान
0: कौन बसते आई तेरा संग लपट रहो रस लोभी पतंग
1: राम नाम जप हृदय माए नानक पद से ती कर जाए।

0: अष्टपदी।
1: जब आकार एह कछु न दृष्टेता पाप पुन तब कहते होता।
0: जब धारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध के संक मात।
1: जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरक सोग को किसे व्यापत।
0: जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होत परम।
1: आपन खेल आप वर्तीजा नानक करने हार न दूजा।
0: जब होत प्रभ केवल धनी तब बंद मोत कौ किसको गणी।
1: जब एक हर अगम अपार तब नरक स्वर्ग को कौन अवतार।
0: जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाई तब शिव शक्त कहो कित खाई।
1: जब आपे आप अपनी जोत तरे तब कमन निडर कमन कत डरे।
0: आपन चलते आप करना हार नानक ठाकुर अगम पार।
1: अबनासी सुख आपन आसन तै जन्म मरण को कहा बनासन।
0: जब पूरन करता प्रभ सोई तब जम की त्रास कहो किस होए।
1: जब अवगत अगोचर प्रब एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा।
0: जब नाथ निरंजन गोचर घाती तब कौन छुटे कौन बंधन बाधी।
1: आपन आप ही अचरजा नानक आपन रूप आप ही उपर जा।
0: क्या निर्मल पुरख पुरख पात होता तह बिन मैल कहो क्या तोता।
1: जय निरंजन निरंकार निर्वाण तै कौन कौन मान कौन अभमान।
0: जय स्वरूप केवल जगदीश तै छल छितर लत कौ कीस।
1: जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे तै किसे पू कम तृप्तावे।
0: करन करावन करना हार नानक करती का नाही सुमार।
1: जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बा मित्र सुत पाई।
0: जै सर्व कलाया पेपर बीन तै वेद कतेब कहा को चीन।
1: जब आपन आप उड़तारे तो सगन अपसगन कहां बिचारे।
0: आपन ऊंच अपने आप नेरा तै कौन ठाकुर कौन कहिया चेरा।
1: विष्णु विषम रहे विषमा।

0: अच्छा निज हृदय करिए, सब बैरन कवार संगरिए।
1: पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा।
0: मैं शार को यवर न त्याऊं, जो पर जाओ सो तुम ते पाऊं।
1: सेवक सिख हमारे तारिए, जन छत्र हमारे मारिए।
0: आप हृदय मुझे अबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए।
1: जो सदा हमारे पछा, श्री अस्तु जो करे और अच्छा।
0: राख ले मोय राखन हारे, साहेब संत सहाय।

0: योगी सिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूठियो।
1: जवन काल सब लोक सुभाना, नमस्कार है ताहे हमारा।
0: जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो। नमस्कार तसी को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी।
1: को सब गुण सुख दियो, सतरण को परमो बल कियो।
0: कट कट के अंतर की जानत, पले बड़े खी।

0: जब यो कर्क करा कर तारा प्रजा तर तब देहे अपारा
1: जब यो कर्क कर तो कब हूँ तो मैं मृत्यु दे तब सब हूँ
0: जीते बरन श्रेष्ठ सब तारा आप आपनी बूझे उचारा।

0: कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सब राता, श्री अस्तु जो पे दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तकाला,
1: मन वांछित फल पावे सोई, दुख नित सब आपत कोई,
0: अरिल्ला सुने गुंग जो याहे सरसना पावे,
1: सुने मूल चित लाए चतुरता आवे,
0: दुख दर्द पौ निकट न तिन नरके रहे,
1: हो जो या की एक बार चौपाई को कह चौपाई
0: समर 17 सहस पर निर्जय।

0: तोहे
1: अपना जान करो प्रतपारा
0: तुम साहिब मैं किंकर थारा
1: लास्ट जान दे हाथ उबारो
0: हमरे सब दरी अंतरंगारो
1: प्रथम तरो भगवत को ध्याना
0: लार करो कविता विधनाना
1: संजथा मचित्र उचारो।

0: कौतुक विष्ण महेश
1: गौर इंद्र ब्रह्मा के तेलेश
0: दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई पाखत नेत
1: बरकरा
0: चौपाई जो है कथा सुन अर

कबहु न बिकया टरै जल तुअ वह देह अनित शुद्ध कह हुइ काज पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरी पद बहुमूच बहुत सियाण जम का बाबया बैन का जतन कर त्रसन्ना तरा पै पी खानी कगन हो जाय कोट पै दरगन हसे जाय छूट स्नह ऊब पयाल मुह प्या पमाय जाल अवर करतु सगरी जम डान गोविंद भजन बिन तेल नह मान हर का नाम जब दुख जाय नानक बोले सहज सुभाई चार पदार्थ जी कुमागा साध जनकी सिवा लागे जी को अपना दुख मटावे हर हन व्रत सदगावे जी को अपने सुबालू रसा संग हमेशर है जी को जन्म मरण ती डराय साध जनक सरणी पर है जिस जन का प्रभु दर्श प्या नानक तक बार बार जासा सगल पुरख मुरख प्रधान सा संग जा को मिटया अभिमान अब सुखाओ जो जरण नीचा सो गणिया सबति ऊंचा जा कमान हुए सगल गिरीदा हर हना दिन काट कर चींदा मन अपनी तिबुरा मिटांदा पीख सग श्रेष्ठ साजना

सर्वांग कह पिंगल पर्वत पार पवन नहि होत उहा सगवन करतार करुणा मैं दीन बेनती कर नानक तुमरी कृपा तर संग सहाय सुवावन अचीत जो वैराई तास प्रीत बलुआ के गृह भीतर बस आनंद कृमा रंग रस दृढ़ कर मन प्रतीत कारण अवय मूढ़ चीत।

सुभाई नैन गुन गाय गुन गावत तिरि उतरस मैल बिन सजाओ मैं बिख फैल हुहि अचिंत बस सुख नायल सास ग्रह सहनम समायल छठ श्याम सगरी मन ससंग पावह सज तना हर पूंजी संच कर व्यवहारि सुख दर्ग जकार सर्व निरंतरी कुदी कह नानक जाक वस्तगरी के कुजा पिकु सलाही एक सिमर एक मनाही उसके गुण गाय आनंद मन तन जावे एक भगवंती कु एक एक हरिया पूरन पूरे प्रव्या बनक विस्तारी कृत भय एक आराध प्राचत गय मंत्र अंतर एक प्रव्रत गुरु प्रसाद नानक एक जात श्लोक फिरत फिरत प्रभाया पर्यात शरणाय नानक प्रवीण दि अपनी भगति लाय अष्टपदी जाचक जन जाच प्रवदान कर कृपा दिव हर नाम साध जन की मांगा तूर पार ब्रह्म सरदा पूर सदा सदा प्रभु के गुण गाय सा प्रभु तुम्हें दिया चन कम।

कौन कौ मान कौन अब मान जहाँ स्वरूप केवल जगदीश तह शाल शतर लगत कहो की स जहाँ ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समाव तह किस पूख कवन त्रवताव कर्ण करावन कर्ण नान करति का नह सुमार जब अपन स्वभाव संग बनायुताव कवन वाय बाब मित्र सुत पाई जह सर्व कलाया कह प्रवीण तह वेद कतिब कह कुचीन जब अपना पुआ बुर तार तो सगन अब सगन कह विचार जह अपन ऊचा अपना अब नीरा तह कौन ठाकुर कौन कहिया चेरा विस्मन विस्मर विस्मान कन अपनी गात जान हो आप जह शाल अशियत अपेद सुमाया उहा के सब आवत माया आप सकव आप आदि सत्य हो गुण का नाह प्रवेश जहाँ ये कह एक एक भगवान ता तह कौन अचंत किस लाग चिंता जहाँ अपना आप दियर तह कौन कथा कौन सरनिहार बह व्यंत उच ते ऊंचा नानक सकव आप पाह ऊंचा जहाँ आप रचिव प्रपंच आकार ते हो गुण में किन्न विस्तार पाप पुन तह पई कहावत को नर को सर्वंशावत आर जाल माया जंजाल हो मैं बुह परम पै पार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की अवख्यान अपन खिलाव कर देख खेल संकोचा तो नानकी

प्रदाग पूर्ण वे प्रदान पुरख प्रगट सवलोय सबती ऊच पाय स्थान बहरना होय आवन जान हर तन खाट चल जन सोय नैनक जिस प्राप्त हुई खेम शांत रेधनाव निध बोध ज्ञान सर्वदा सिद्ध विद्या ताप जोग प्रवत्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम संदान चार पदार्थ कमल प्रगा सबके मद सगल जीव दास सुंदर चतुर तत् कवियता समुद्र सीख दृष्टियता इह फल तिह जान कह मुख पने गुरु नानक नाम वचन मन सुने हुन दान जप मन कोय सब जुग मह तागिगा दोय गुण गोविंद नाम तुन बाणी सिमर शास्त्र वेद बखाणी सकल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कह मन विश्राम कूट अपराध सात संग मेटा संत कृपा ति जमदी छुटा जा कमस्तक कर्म प्रभ पाई साध शरण नानक त्याई जिस मन बस सुना लाय प्रीत तिह जन आव हर प्रभ चीत जन्म वरुण ताक दुख नवार दुलभ दिह तत्काल उदार निर्मल शोभा अमृतता की बनी एक नाम मन वाहि समानी दुख रोग बिनसी पै परम साध नाम निर्मलता की करम

पौड़ी। गुरमुख सखिया सिख गुरु मेलाइया, एक सेवक गुर पास एक गुर कर लाइया। जिना गुर प्यारा मन चित तिना पाओ गुरु देवाइया। गुर सिखा इको प्यार गुर मिता पुता भाइया। गुर सत गुर बोलो सब गुर आख गुरु जीवाइया। गुर सिखा इको प्यार गुर मिता पुता भाइया।

चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं भव स्वभं सर्वदा सर्व जुगते दुकालं प्रनासी दयालं स्वरूपे सदांग संगे अभंगं विभूते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाह दसवींता प्रसाद सवैये सराव शुद्ध समूह सधान के देख फिरियो घर जोग जती के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधाधिक संत समूह अनेक मती के सारे ही देश को देख रहे हो मत कौना देखे प्राण पति के श्री भगवान की भाई कृपा हो ते एक रती बिन एक रती के माते मतंग जरे जर संग रूप तंग सुरंग सवारे कोट तरंग तरंग से कुद पाउन के गौन को जात निवारे भारी तुजान के भूप भली बिदन आप शीस नजात बिचारे एते भय तो कहा भय भूपत अंत को नांगे ही पाए पुदारे जीत फरा सब दे दिसान को बाजल धोल में दंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसती हरा जजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गना ने जात बिचारे श्री पासी भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सदारे तीर्थ नान दया दमदान सुसंजम नेम अनेक वसिखा वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान समान के पेखा पौन आहार जति जात धार सबै सुबिचार हजार के लिखा श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लिखा शुद्ध सपहा दुरंत दुबा सुशासन दरजान दलांगे भारी गुमान भरे मन में कर परबत पंखा लैन आह लेंगे तोर अरीन मरोर मुआसन मातिम तंगन मान मिलेंगे श्री पाद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निधान चलेंगे वीर पार बड़े बरियार बिचारे सार की धार पछैया तोर देश मलिंद मुआसन माते गजान के मान मलैया गाड़े गडान के तोर नहार सुबात नहीं चक चार लवैया साहेब सरी सब को सरनायक जाचक अनेक सुख दवैया दानव देव निंदन साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप तपेंगे पुन पर तापन बार जैत धुन पापन के बपुंज कपेंगे सास मुख प्रसन्न फरा जग सतर सबैव लोक चपेंगे मानव इंद्र गजिंदर नरादप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजातिक दान अनेक सोमवर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सची पतंथ फसे जम फास परेंगे जे नर सी पत के प्रस है पाग ते नर फेर ना देहे तरेंगे कहाँ प्यो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहो बक ध्यान लगायो नहात फिरियो लिये सा समुद्रन लोग यो पर लोग गवायो बास क्यों बिख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सुबैस बतायो साच कहूं सुन लिहो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहल पूज धरियो सिर काहू लै लिंग गरी लटकायो काहू लख्यो हर अवाचित सामै काहू पिशाह को शीस नवायो को बतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तायो पूर क्रिया उर्जो सब ही जाग श्री भगवान को।